0: सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
3: சென்னை அகில இந்திய வானொலியின் 88th ஆண்டு விழாவை இணைந்து கொண்டாடுகிறது பாரத ஸ்டேட் வங்கி SBI. ஒவ்வொரு இந்தியரின் வங்கி SBI, எல்லா வழிகளிலும் உங்களுடன். SBI தூய வங்கி சேவை, மற்றவை எதுவும் இல்லை. நாட்டின் பெரிய வங்கி, பெரிய நன்மைகள். SBI, அது உங்களது வங்கி.